0: दादा ते कमर उठी निक
1: अने पुते ओय टूथ पेस्ट के ने वे ओ कामगे मोने गान पेस्ट एक मोकद अने ओय मेस्ट के पटला पेन मत हरिट दा गन्नको
2: Welcome show.